0: धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर। तुहाडा जिहड़ा जस है वह तो हुण खीर समुंदर तो भी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तुम्हें कहके संदेश जो।
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीरति है यह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीरति तो बहुत असीं किवें कह सकदे आ? तुहाडा तो जस पहला ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीरति लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास

0: दिन गुर के सभा में श्री अर्जुन की रहत।
1: एक दिन का भजन है कि महाराज दसवें पातशाह ने भरी संगत दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने जो रहत मर्यादा भाव जो श्री सुखमनी साहब दे विच मर्यादावां दा वर्णन किया है ओ सारियां संगतां नूं सुनाया है।
0: कल महिमा सुखमनी बहु जप जी महिमा महत।
1: कलयुग दे समें दे विच श्री सुखमनी साहब दी महिमा बहुत ज्यादा है अते दे नाल नाल जप जी महिमा महत जप जी साहब दी महिमा जड़ी है ये भी बहुत ज्यादा है।
0: जिनके सेवन ते मिटे बिघन तलक संदाए।
1: जिन्हां दे पढ़न नाल बाणी पढ़दिआं फिर सुननी कमाउणी बाणी पढ़दिआं बहुत सारी मन दी जिहड़ी कालख है अथवा कलख जिहड़े पाप ने साडे कीते होए कई प्रकार दे बिघन ने

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे,

सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड प्रभु ध्यान दियो जी जग दियां रूहां अकादरता बख्शियो कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरू कर हर टर एक खूह बना आ जिहड़े सवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे तौण अकादरता बख्शे इस माल नूं जिहड़ा तूं आए नूं खिचे कौण कहिंदे इस भीतर मन जोग सरवण कीता इस भीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं जो मन जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दियां माला टिंडा खिंचण लई मन नूं बलद बनाओ ते मन ता साडा सिमरन करदिआं वी दौड़दा रहिंदा है साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडां नूं खिच ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटी छोटी मट्टा पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानूं पता पिंडां दे रहण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी दे साहब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया महाराज शरीर ते केहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गुरु के बोलो सतनाम महाराज खेतां विच ते क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे केहड़े कहिंदे अखां नाम जपन वाले दी अमृत ना भर दिंदी अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पा फिर आखिया महाराज होर केड़ा क्यारा भरीये महाराज कहिंदे रसना अमृत नाल भर जांदी गल करन लगदा वा ते कहिंदे फलाना बंदा भजन करदा मुंह चो अमृत डोलदा नाम जपण वाले दी रसना कदी फिका नहीं बोलदी नाम जपण वाले दी रसना सदा मिठा बोलदी अमृत वर्गा साहिब कहिंदे ने मन नूं जो इह सवासा दी माला बना मगर इह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्लेओ अमृत आउणा नहीं ओह इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई मन नूं विच जोड़ना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

आप उस सज्जन कदी आवाज मारियो, आवाज जरूर मारियो, आउंदा दे आउंदा दे, आवाज जिन्हें मारी उन्हां दे घर आउंदा दे। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी गोद विच बैठा कह रहे तुहाडा चौकीदार आउंदा दे आवाज मारियो। फिर एक बार रिपीट करावा, आउंदा दे आवाज मारियो। मारो अंदर आत्मा तो आवाज, आवो सज्जना हाँ देखा घर अपनड़े खड़ी तका, घर अपनड़े खड़ी तका।

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गज के आख्या करो तुहाडे परिवार दा भला, तुहाडे जीवन दा भला, पंथ दा भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तरलाए ऐरकां दे प्रचार दे विच ते बहुता तरला पाउण दी हुण जरूरत है, क्योंकि नेहरियां बहुतियां आ गईयां। एक पंछी आ सिख पंथ जिहड़ा है ना, एक पंछी लिखिया गुरबाणी दे विच, सरवर पंखी हेकड़ो। बोलो सरवर पंखी। सरवर दा पता है सरोवर। कहिंदे सरोवर दे कंडे उत्ते, इस दुनिया दे सरोवर दे कंडे उत्ते सिख पंथ रूपी एक पंछी है आण के बैठा, शुद्ध मोती चुनण वाला। सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास। इहनू फाइयां लैके जिहड़े फंड वाले ने ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਪੰਜਾਹ ਨੇ ਲੱਖ ਅਹੇਰੀ ਏਕ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ

मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा तन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नानक बोले

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया

हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ। सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभ आ। सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उन्हूं महारनी पका ली भी तोतिया पोस्त नहीं खाना। ध्यान दियो, तोतिया पोस्त नहीं खाना। एक दिन वह तोतियां दी डार विच उड के रल गया, सारिया नूं महारनी पकाती, तोतिया पोस्त नहीं खाना। ते सारे ही तोते उड़दे उड़दे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए ते सारिया ने चुंझा भरिया, पोस्त खाई जांदे ने ते जेदी चुंझ खाली होई जांदी ओह आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है। नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते न्याणे ना बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी। इस तरह का नहीं, बार भुलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा मगर अपनी औलाद दे कन्नां विच ए छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ। घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चां नूं सिखाओ। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आ हुण बाबा फरीद जी दी रसना तों मुबारक भजन सरवण करिए जी।

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सरबत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दीन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह दी बाणी सरवण कीती, नितनेम साहब सरवण कीता है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश होके आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणजक।

लाल गए गुरमुख लाल गए गुरमुख लाल गुरमुख लाल गए चले मूल गवाए मनमुख

0: तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडे वल झाती मार एक चिट्ठियां लिखियां ने मिशनरी कॉलेज वालिया चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईया चिट्ठियां लिख ते उना दे विच दोखी ते लिखे ने उना दे विच एही ते लिखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी मैं तुहानू आ बेनती करदी हां मैं तुहानू आ बेनती करदी हां जीव आत्मा वालों चिट्ठियां लिखियां कदी पढ़ियो कदी चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईया फिर बोलो चिट्ठियां लिख आपां वी एक बेनती करिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक एक छोटी जी बच्ची आसन सोल पांच क साल दी बच्ची सवा क लख दा इकट्ठ संगत गुरु नानक दे पुरब ते जुड़ी जो बिहारी जो बंगाली जो सिख उस इलाके का ट्रकां वाला बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उधर रहिंदे ने टाटा नगर आसनसोल हजारी बाग ए शहर बड़े बच्ची सारी संगत वाला हाथ जोड़ के कहिंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत वाल उंगला मार मार के कहिंदी ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक है नीला घोड़ा ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक की है बोलो नीला घोड़ा ते ओ बची सारी संगत वाल हाथ करके कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा च हाथ जोड़ दी नीले नू कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा विच हाथ जोड़ दी एक बार मुड़ के आ एक बार मुड़ के आ ते अपने सवार नू उत्ते भाल के लिया ते मैं तेरी लगाम फड़ लू पांच साल दी बच्ची कह रही मैं तेरी लगाम फड़ लूंगी ते मैं एक एक सिख दे घर विच तेरे सवार नू लैके जाऊंगी ते जदों घर दे विच बच्चियां दे कट्टे केस दाड़ियां कट्टियां शराबां दियां बोतलां मांस पिया विखाऊंगी ते मैं आखूंगी नीले दे शाह सवारा इन्हां लई पुत वार के गया है इन्हां नी मां वारी सी इन्हां लई प्यो वारिया सी आ वेख तेरा सारा पंथ अज तेरे तो बेमुख हुंदा जांदा ही मेरा कहण दा मतलब है तुसी भी एक बार बापू नू कहो तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडा जीवन हो गया चिंता दी मंजे ते सुते ही दुखा दा वाण ही चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछावण लेव तलाई विछोड़े दी विछी इस तरह के मंजे ते असी जीवन बतीत कर रहे विछोड़े दे विच सड़ रही तेरे दे विच अगला वचन सरवण करो जी
1: बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान
0: बड़े सुंदर वचन किते ने बाबे ने हुण समाप्ति करांगे एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री बाबा कहिंदा दुनिया कहिंदी विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा बड़ा माड़ा आपां कहिंदे ना विछोड़ा बड़ा माड़ा है एक थां ते लिखिया गुरबाणी दे विछोड़ा सुने दुख विछोड़ा विछोड़ा एक एहो जिहा शब्द है जिहदा नां लिया ही दुख हुंदा है मगर इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यार दे वचन विच कहिंदे बिरहा बिरहा आखिए लोकी कहिंदे विछोड़ा विछोड़ा मगर बिरहा तू सुल्तान तू ते बादशाह है बिरहा तू ते पातशाह है केड़ी गलो जी हां जी
1: फरीदा जित तन बिरहो ना उपजे
0: हाय हाय हाय
1: सो तन जान मसान
0: कहिंदे जेदे विच हिरदे विच ए विछोड़ा ही नहीं जेदे अंदर विछोड़ा पैदा ही नहीं होया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे जिन्हें कदी ये क्या ही नहीं जन्म

गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूरख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै।

वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लागी हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी ओदे तो बिना उदास हो गई है, शेर देण नू तैयार है। आंदी हां सजना नैण हमारे पिरिया रंग रंगारे, मेरिया अखां ओदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नू नहीं देख दियां, ए 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

लोभ लभाया मोरी रुण चुन लाया भैने सावण आया। ते पिछे जाके एक बचन मेरे साहब ने बड़ा सुंदर कीता है, कहिंदे एक दिन फिर उस सुपने विच आ गया, आखो सतनाम श्री, आया सुपने विच, ध्यान देना एकाग्रता बख्शो, सुपने च आया, सुपने च, सुपने आया, बोलो सुपने, ए बड़े दिन की कहिंदी सी मैं दर्शन करने दर्शन करने, उस सुपने च आया, सुपने च आया, ते कुछ छिन दर्शन ददार दे के कोल बह के चले गया, सुपने आया पी गया, जिन्ना चिर नहीं सी वेख्या उन्ना चिर गल होर सी, सुपने विच ही झलक विखा के चले गया, हुण रोंदी आ मैं जल भरिया, रोए अखा च जल त्रप त्रप वगी जांदा है, ते कहिंदी आ हुण करां की, सुपने च ते मिलिया चले गया, हुण आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई, तेरे कोल ना कोई सुना भेज सकदियां ना मैं आ सकदियां, क्योंकि पता नहीं तू रहिंदा कित्थे आ, हुण ते रात दिन किसे वजोग च कहिंदी आ धन सो।

करो कृपा। विण सिर सेव करी जय, विण सिर सेव करी जय, विण सिर ये पक्के गुरु दियां प्रेमणा ने, जिन्हां नूं पूरे गुरु की चेता लगी आ, जिन्हां नूं पूरा गुरु मिलन दा चाह मन विच पैदा होया, वह सौदा कर दियां ने, कहिंदियां सिर दवांगियां, सिर सिर दा मूड़ा बना के तेनू उत्ते पावांगियां, एक बार मैनू प्यारे दा राह दस। अज कच्चे गुरु कच्चे कहण वाले, मैं अजूटा सैटी जिथे गया सां, गुरमुख प्यारे भी गए सी, भाई तारा सिंह हुणी उथे प्यारे, एक सज्जन मिलिया मैनू, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, प्यास की गल आ के प्यास भी लगे ते पूरे गुरु दे दर्शना दी लगे, पूरे गुरु दे दी किना दी, फिर एक बार आखो कादी जी, अधूरे बड़े ने 99, अज अधूरे ने

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन में की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चौर हो सकता है होर किसे ते चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे होए दी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भुआ के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवां नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

असली गल का पता लगे कि संसार विच मैं कितना जीना है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती नूं प्रवान कर लियो, जेड़े जेड़े गुरमुखी पढ़ सकते जे आपो अपने घरां दे विच इक इक सहज पाठ आरंभ करिए। जे बहुती जल्दी नहीं हो सकता, आउंदे साल तक ते पावांगे ही। दो दो चार चार अंग रोज दे पढ़ो, पांच पांच अंग रोज दे पढ़ो, सवेरे पढ़ जाओ शाम नूं पढ़ो आण के। ते तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक दा 400 साल मनाउण तक एक अंग तो लैके 1430 अंग तक एक बार पूर्ण तौर ते आप दीदार करो। अजे ते पाठियां नूं पैसे दे के काम सार लिया वा, अपने गुरु दे आप दीदार करिए, दर्शन परसीए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। आओ जरा बाबा फरीद जी दे बचन श्रवण करिए जी।

पूरन छगलिया अमृत ते आख्या साहबा मैं हुण की करिया करा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु आख्या जोड़े चाड़िया कर की आख्या इना हथा नू बहुत कुछ लग चुकिया है सोचो इना हथा नाल किनिया बेईमानिया कीतिया ए हथ किन्ने अपवित्र ने ए हथ पवित्र उदो ही होने ने कर हर कर्म कर ए कर कहिंदे हथा नू जिदने हरी दे कर्मा च लगणगे हथ झाड़न जोड़े झाड़न गे गुरु गोबिंद सिंह साहब नू पुछया इन्हें छोटी जी आत्मा ने आख्या सतगुरु तू मेनू अमृत दिता है हुण मैं करिया की करा ते आखण लगे मेरे आ पुत्रा जोड़े झाड़िया कर संगत दे जोड़े हुण नहीं कोई कहिंदा ये गल जे अपने जीवन नू मुबारक बनाउणा है जे आपां अंदरों जिन मारना है जे अंदरों बैठे सप नू मारना चाहुंदा है हौमे रूपी सप नू मारना चाहुंदा है अंदरों वो जिहड़ा मन शैतान बैठा जे उहनू खत्म करना चाहुंदा ते जोड़े झाड़िया कर अच्छा सतगुरु जोड़े झाड़ना बड़ा वड्डा पुन्न आ हां पुत्र जोड़े झाड़ना बड़ा वड्डा पुन्न आ इह प्यो कह रहा पुत नू ते पुत कहिंदा जी होर की करिया करां जे टाइम मिलिया करे ते फिर संगत दे जूठे बर्तन साफ करिया कर आख्या महाराज ओ की करू ओदे नाल की होऊ ते मेरे सतगुरु ने आख्या जोड़े झाड़न दे नाल ते मन साफ हुंदा ही आखो सतनाम श्री जदों संगत दे जोड़े साफ करे जिन्ने घुट के जोड़े साफ करिए उन्ने मन दी मैल लादी हौमे मिटदी जांदी ते अंत च करन शुद्ध हो जांदा जूठे बर्तन साफ करन नाल एक दिन फिर गुरु प्यारे हो जोड़े साफ कर लिया सी ते मेरे कलगीधर पातशाह सिर दे उत्ते खलोते सी उन्हूं नहीं सी पता कि जिहदे नूं अमृत दे दिंदा फिर उन्हूं कहिंदा खालसे के हो साध साध संगा बोलो खालसे के हो साध साध उन्हूं बच्चे नूं पता नहीं सी उह सिर ते खलोता सी तुहाडे मेरे जिन्हां ने अमृत छकिया वा गुरमुख प्यारे हो जे चंगे कर्मा करके गुरु कोल खलोता ते बुरे कर्म नूं भी वेख रिहा गुरु बुरे कर्म कर लगे भी नर अचेत पाप ते डर रे हे अचेत नर पाप कर लगा डरिया कर उदों भी चेते करिया कर गोर

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगाद सच खैपी सच नानक खुशी पी सच